0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 10 बजे हो।

0: मन पराएर मलाई तर्पाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा
1: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तर्पाएर
0: सीआरबीटी नम्बर 01300045429 सीआरबीटी नम्बर 7045652 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
1: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्तनाली संबंधी रोगहरूको उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
1: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापीहरू सानो चिरफार मिनिमल इन्भेसिभ विधिबाट ट्यूमर नष्ट गर्ने उपचार
2: शरीरमा जम्मा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
1: पाठीघरको मासु युटेरिन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061582778852279582778

को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 7 बज्यो।

0: जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार में कुसुमा नगरपालिका पर्वत
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।